0: वहाँ पे सुशर्मिन रोनी है तो इसका हुआ अभी की हुआ हुआ है लेकिन ये कॉम है सॉफ्ट ऑन पुश
1: बच्चे।